0: हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्कार हजुर।
0: ठेकेदार साहब नमस्ते।
1: हजुर हजुर।
0: अनि तपाईको त पेन्डिङ बिल पास भयो हैन त?
1: बल्ल बल्ल हिजो मात्र पास भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर।
0: अनि सुन्नुस् न ठेकेदार साहब, अर्को महिना चाहिँ म र मेरो बहिनीलाई भेट्न अमेरिका जान लागेको, तपाईले चाहिँ सबै अमेरिका जाने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो है।
1: के टेन्सन हजुर, म छँदैछु नि हजुर। अमेरिका जाते आते सम्पूर्ण कुरा म बिर्छु नि हजुर। म छु नि, म के काम हजुरको।
0: थ्याङ्क यू।
1: हस् हजुर, दर्शन दर्शन हजुर।

पड़ते अने अपन ने जीवन छोड़े ने पड़ते जाते वाली ये सब मत आए ये भगवान मलाई के भाई हाले बने पड़े।